0: on ECFM, Kenya's premier Asian mix. Hold on a second.
1: Hi everyone, this is Arman Malik and you're listening to Rehmat Hafeez on ECFM.
0: Hi, what a star, made my morning as well. And I'm sure you're enjoying the songs also. If you want to add a song to the midweek playlist right now, get in touch 0701-106-106. Not much of chaotic ding-chak, but feel good for you right here on The Breakfast with me, Rehmat. If you want to add to it, get in touch 0701-106-106.
2: नैरोबी के संगीत प्रेमी तैयार हो जाएं, दिलकश गजलें, रोमानी धुनें, दिल को छूने वाले सुरों की शाम के लिए मेहुल और शैलेश लेकर आ रहे हैं सुहाना सफर, एक शानदार महफिल पुराने बॉलीवुड के यादगार नगमों के साथ। 3 अक्टूबर शाम 6 बजे जैन भवन लोरेशो के ऑडिटोरियम में जाने माने साजिंदे मेहुल सवानी और शैलेश सवानी का साथ देंगे। याद रहे 3 अक्टूबर सुहाना सफर, और फौरन अपने टिकट्स बुक करें ऑनलाइन।

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: दिल नादान तुझे हुआ क्या है।
1: प्रवीण जी, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, ये गाना फिल्म मिर्जा गालिब का है, 1954 की मूवी है, जिसको तलत महमूद और सुरैया ने गाया है, और जिसको मिर्जा गालिब ने लिखा है, और जिसकी धुन गुलाम मोहम्मद ने बनाई है। ये मूवी बहुत अच्छी लगी और उसका गाने सब अच्छे हैं। सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: प्यार अली भाटिया, बहुत अच्छे। मिर्जा गालिब और गुलाम अहमद, उफ क्या जोड़ी हुई होगी। खैर समिन, अब चलते हैं। मैंने आपको पूछना है कि दो पाकिस्तानी पायलट्स हैं, पाकिस्तानी पायलट्स, जी जी, आप कहेंगे युद्ध के मैदान में कुछ किया, नहीं, दो पाकिस्तानी पायलट्स को एक मुल्क है जिसमें ट्रेनिंग मिल रही है, इनको तरबियत दी जा रही है, स्पेस मिशन में ये भाग लेंगे। जिस मुल्क में गए हैं ना, जहां ट्रेन हो रहे हैं, उस मुल्क की स्पेस मिशन, फिजाई मिशन है। इनमें एक पहला पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट बनेगा, जी हाँ, वो पहली बार जाएगा फिजा में, खला में। इस मुल्क की भाषा भी सीख रहे हैं ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद, ये दोनों आए हुए हैं पाकिस्तान से, पर गए कहाँ हैं, ट्रेनिंग कौन दे रहा है इनको, कहाँ की मिशन का ये हिस्सा बनेंगे आगे चलकर, ये बता दें। 07011061106 और तलत महमूद

और सबसे पहले किसने, दो लिसनर्स ने मुझे एक साथ जवाब दिया, एक्चुअली तीन लिसनर्स हैं, 11:28 पर जवाब आया। पहला यासर आपका करेक्ट, चिराग पटेल आपका करटीना से बिल्कुल, और सोनल मोदा आपका, ऑल सभी ने आंसर 11:28 पर दिया था। जिसके बाद आती हैं 11:29 पे रितु गुप्ता करेक्ट आंसर, और रसीला शाह बिल्कुल सही जवाब, मंजुला विश्वकर्मा ने भी सही दे दिया है, और धीरूभाई लखानी, परवीन आदम, आपके गीतों और बातों को सुनकर मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं 84 साल का हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे धीरज भाई, धीरज लाल लखानी, खुदा आपको खुश रखे। आशा भीमानी आंसर करेक्ट, दीपक वडगामा मतलब एक भी आंसर गलत नहीं निकला, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आंसर था चाइना, समझ, चाइना एक ट्रेड मिशन के लिए इनको कर रहा है, और क्योंकि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं इन दोनों देशों में, तो वो करेंगे, स्पेस मिशन का हिस्सा बनेंगे।

सोनल मोदा आपने दोनों पायलट्स की तस्वीर भेजी है जो समन ट्रेनिंग ले रहे हैं, दोनों पाकिस्तान के पायलट। सोनल थैंक यू, गुड पिक्चर। और साथ आती हैं रूपल, रूपल कहते हैं जलते हैं जिसके लिए, टू गुड, व्हाट अ टाइमलेस सॉन्ग। वाकई सही कहा आपने, ये कभी पुराने नहीं होंगे। रोशन कान जी आप भी इंजॉय कर रही हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब एक गाना ब्रेक से पहले

0: और मैनचेस्टर से भास्कर पटेल आप सबको ग्रीट कर रहे हैं समीन और साथ ही सैली डार फ्रॉम लंदन और शनाज बट फ्रॉम तंजानिया आपने सही जवाब भी दिया था और अब मंजुला गोरसिया कहती हैं कि मेरे पास एक सवाल है समीन एक हिंदी का लफ्ज है ब्रह्मासन वो कहती हैं कि इसका मतलब क्या है मुझे पता है कि मैंने ब्रह्म अगर देखा है तो ब्रह्मचारी देखा है लेकिन ये ब्रह्म आसन कह रही हैं इसका मतलब कोई समझा देगा जो हिंदी जानते हैं उनको तो पता होगा अच्छी तरह से समझा दें और अगर मैं ये गलती कर रही हूँ प्रोनाउंसिएशन में तो अपना मैसेज ज़रूर भेजें वॉइस और यहाँ पर हैं जितेंद्र
1: हेलो प्रिंस जी नील गंग के तेरे धरती का प्यार पले इतना प्यारा गाना वा इतना नेचर ते गाया है वा सारे गाने थोड़े आज बेस्ट आ रहे हैं थैंक यू जी
0: बहुत अच्छे एंजॉय करते जाइएगा फरखंदा शेख
2: वेलकम परवीन मैं फरखंदा शेख बोल रही हूँ आपका तो बेमिसाल अंदाज इतना अच्छा है प्रोग्राम में कि लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी इतना एंजॉय कर रही हूँ परवीन मैंने लेमन का अचार खा लिया मेरा गला बैठ गया और आप मुझे माजरे देंगे अल्लाह हाफिज फरखंदा
0: वाकई आवाज़ भारी हो गई है समझ कई बार ये अदरक और ये लीमू ये बकवास कोई इनमें ना जाने क्यों इनमें कोई असर नहीं रहा हमारे माँ बाप की जो थी ये जो नुस्खे थे काम ही नहीं करते दर्शन सिंह लोटे इन ऑस्ट्रेलिया जलते हैं जिसके लिए वाकई कमाल का गाना तलत महमूद का किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप अपनी बारी का इंतज़ार करें किसी को दुख देना एक करस है कि आपको किसी के हाथों मिलेगा किसी का दिल इतना ज़ोर से मत दुखाओ कि वो खुदा के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श को हिला देती है ये तो सुना हुआ है अमीर अली राना वाकई बहुत खूब मंजुला गोरसिया ब्रह्मस्थान है कि ब्रह्मासन है उन्होंने कहा है ब्रह्मस्थान ओ ओके तो आपने कहा था ब्रह्मासन ब्रह्मस्थान कहा है व्हाट इज ब्रह्मस्थान तो फिर तो ये धर्म का स्थान हुआ ना खैर ब्रह्मस्मान इन हिंदुइज्म दिस रिफर्स टू अ सीक्रेट sacred Vedic chant or hymn sung during special sacrificial rituals by the chief priest. Yasir कह रहे हैं ब्रह्मस्मान हिंदुइज्म में एक तरह की वैदिक चांट है एक हिम है जो कि एक sacrificial ritual के दौरान मतलब कुर्बानी के रस्म के दौरान पंडित पढ़ते हैं अच्छा ब्रह्मस्थान अब ये आया है सलमा अहमद ब्रह्मस्थान अकॉर्डिंग टू मी इज अ सीक्रेट बिल्डिंग विच इन अदर वर्ड्स द हार्ट ऑफ द होम ओ रियली ओके और भी हैं तो ज़रूर बताइएगा कि ये ब्रह्म उन्होंने कहा है ब्रह्मस्थान

0: यासर ने जो कहा है वो मुझे इट मेक्स सेंस. आपने कहा है ब्रह्म स्थान इज द सेक्रेड एग्जैक्ट जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ अ प्रॉपर्टी. अगर आपका मकान है तो इसका मरकज कहाँ है, सेंटर कहाँ है, वो है ब्रह्म स्थान. तो ये है यासर. साथ ही सोनल मोदा, आई थिंक सेंटर पॉइंट, ब्रह्म स्थान इज अ सेंटर पॉइंट. ओके, हमारी टीचर आ गई हैं हिंदी की.
1: परवीन जी, ब्रह्म स्थान वह जगह होती है, वह स्थान होता है जहाँ भगवान ब्रह्मा का स्थान होता है, जो कि घर के केंद्र में और सबसे पवित्र जगह में होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार.
0: वाह, क्या बात है मंजुला विश्वकर्मा.

पहले तो जो सबसे पहले आया है वेरी गुड, जिन्होंने ये जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि इसका है मतलब मेधा। आपने कैसे कर लिया? आपने कहा है सहूलत, वेरी गुड। सहूलत सहूलियात प्लूरल हो गया है ना मेधा। ओके पैखाना उमर ने कहा है फ्रॉम दुबई। चिराग, सुविधा इन हिंदी एंड सहूलत इन उर्दू, वेरी गुड। रसीला आपने कहा है appreciate from the heart, thank you. Convenience, यासर आपने कहा है सहूलत इन उर्दू, मुझे काम की जगह के करीब रहने की सहूलत बहुत पसंद है। यू सी, उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मेरा जो दफ्तर है मेरे घर के करीब है, मुझे काम की जगह के करीब रहने की सहूलत पसंद है। वेल डन, आपने हमें एग्जांपल दी है जुमले में सहूलत को इस्तेमाल करके। सोनल मोदा, कंफर्टेबल नहीं अपनी भाषा में। सलमा अहमद, हिंदी ये सुविधा विच मीन्स कंफर्ट, ईज एंड कैन मेक अ टास्क सिंपलर। सेंटेंस, यहाँ रहने की अच्छी सुविधा, जी ये कन्वीनियंट है मेरे लिए जहाँ मैं रहता हूँ। और सना काना, ये आपने करेक्ट स्पेल नहीं किया। अब सुविधा कहा है रूपल ने भी, और कोई सेंटेंसेस हो तो ज़रूर दीजिएगा जुमले जिनमें आपने सुविधा या सहूलत इस्तेमाल किया है।

0: देखना है कि क्या सुविधा इज द सेम एज सगवर्द. गुजराती में सलमा ने रूपल ने कहा है इन गुजराती इट्स सगवद अया आपने सारी रीते रेवानी सगवद छे. अच्छा सहूलत है ओके हो सकता है अया आपने सारी रीते रेवानी सगवद छे. ये गुजराती में रूपल ने कहा ओके. अब देखते हैं सुविधा अनुसार या एट योर कन्वीनियंस सुविधा अनुसार. और नहीं आराम नहीं है. मिसेस धंजल
1: हेलो प्रवीण जी. मिसेस धंजल है प्रवीण जी. यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं सुविधाजनक. ये जगह जो है मेरे लिए सुविधाजनक है. थैंक यू वेरी मच.
0: अच्छा ये जगह कन्वीनियंट है. ये जगह सुविधाजनक है. गुड मिसेस धंजल. आपकी आसानी के लिए लेकिन सुविधा सुविधा इज द करेक्ट वर्ड. यानी इट मींस आपकी आसानी के लिए. इन गुजराती सगवद आपने देख लिया है सोनल मोदा. आरामदायक खुशी नो दैट इज समथिंग एल्स. आरामदायक जो चीज़ आपको आराम दे लेकिन वो सहूलत है. इज इट राजी करवाना और विश्वास दिलाना राजी करवाना और नहीं ये सुविधा है कन्वीनियंस. और मंजुला विश्वकर
2: सरवीन जी एक तो है सुविधा और दूसरा है सुलभता. जैसे आपकी सुविधा के अनुसार हम मिलेंगे या आप जब हमें सुलभता से मिल जाएं तब हम मिलेंगे.
0: अच्छा सुलभता कभी किसी ने सुना था. सुलभता और सुविधा आर द सेम. मंजुला थैंक यू. रसिला आपने कहा इन गुजराती सुविधा मींस कन्वीनियंस कंफर्ट फैसिलिटी. ट्रांसलिटरेशन मींस हॉस्पिटल मा दर्दियों माते सारी सुविधा छे. बिल्कुल ये कन्वीनियंस है उनके लिए सुविधाएं हैं उनके कन्वीनियंस के लिए. मुसाफिर माते सरस सुविधा सगवड छे. ओहो सगवड छे इज अ वर्ब. सुविधा सगवड छे. ये अब आप फैसला करेंगे कि कौन सा करेक्ट है सब ठीक है कि नहीं है.

0: और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी बनी है. पहले तो देखते हैं कि मैनचेस्टर से भास्कर पटेल कहते हैं, आपने तलत महमूद के गाने इतने बढ़िया सुनाए. मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरी मुलाकात, कहते हैं कि इनकी मुलाकात तलत महमूद के साथ हुई थी जब वो नैरोबी आए थे. वाह क्या बात है. ये कहा है भास्कर पटेल. और मिसिस पटेल ने कहा है कि पता कि मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ ना, मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट, ये बहुत बड़ी सुविधा है. ओके कन्वीनियंट है राइट. और चलते हैं, नीला शेथ ने मिटा दिया अपना. ओके सलीम मेहर.
1: प्रवीण जी अस्सलाम वालेकुम, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन. Praveen ji, if I remember rightly, today is Wednesday, it's midweek. These fantastic songs you're playing are normally played on a Friday so that we miss you on Saturday, Sunday. But mind-blowing songs, thank you so much for playing them.
0: हाँ सलीम मेहर, आज ना जाने कैसे सभी ब्यूटीफुल गाने हो गए हैं एक साथ. फ्राइडे की लिस्ट बन गई है वेनसडे के ही दिन. सलीम मेहर, आई एम सो हैप्पी यू आर एंजॉयिंग. और आसाइश लग्जरी, इट्स नॉट आशीष इट्स आसाइश, सना आपने कहा है. और मंजुला विश्वकर्मा.
2: परवीन जी, सुलभ भाता सुलभता सुलगता नहीं, सुलगता तो बर्निंग हो गया, वो गलत हो गया है. सुलभता मतलब इजीली आपको, आपके हिसाब से आपको, जिसमें आप सुविधा महसूस करें.
0: सुलभता, तोबा तोबा, बहुत मुश्किल हैं दो दो भाषाएं एक साथ लर्न करना, क्या बात है. चलिए सोनल.
3: नवा मकान मां रहवा जवाथी अमने बधा ज प्रकारनी सगवड़ता मळी रहेशे. सोनल फ्रॉम मंबासा.
0: सगवड़ता, ओके हो गया. मैं आपसे पूछती हूँ अब एक बात, और वो क्या है कि अब अगर आपने कन्वीनियंस, मैंने आपको दिया, आपने कर दिया हिंदी में, अब इसको इंग्लिश में ही रहने दीजिए कन्वीनियंस को, लेकिन दुकान के साथ जोड़ दीजिएगा और मुझे बताइए इसका फिर मतलब क्या है. दुकान रहने दो इंग्लिश में और इसको दुकान के साथ जोड़ दें.
4: It's 12, 21.
5: Three Grammy Awards, more than 29 million certified albums and singles sold in the US, and 5 UK number one singles. A voice that defined an entire generation. From So

0: टाई बस लगा ली और समझ बैठे कि आप हीरो हैं। मैंने कहा कि दुकान के साथ लगा दो कन्वीनियंस को और इंग्लिश में रहने दो, ठीक है। सबसे पहले जवाब देने वाली हमारे रूपल हैं, उन्होंने सही जवाब दिया है। सलमा अहमद, जी जी बिल्कुल। और रितु गुप्ता, कमाल है, एग्जैक्ट। चिराग पटेल, आपने कहा है सुविधा दुकान, सुलभ दुकान, सुलभ है सुलभ दुकान, ऐसा कोई कहता नहीं है, इस्तेमाल में नहीं मैंने देखा सुलभ दुकान। खैर, सना काना, आपने भी यही कहा है। सोनल मोदा, आपका जो था वो शायद ये था आंसर।
1: दुकानमां खरीदी करवा माटे ऑनलाइन पेमेंट नी सारी सगवड़ता छे।
0: हाँ, सगवड़ता वर्ता, ये बेहतर है, बिल्कुल। अब मंजुला,
2: परवीन जी इसे बोलेंगे कन्वीनियंट शॉप, जहाँ की आपको सब कुछ आसानी से सुलभता से मिल जाए, ऐसा शॉप कन्वीनियंट शॉप। कन्वीनियंट शॉप जो आपके घर के आसपास ही हो और जहाँ आप आसानी से जाकर आपकी जरूरत की चीजें खरीद सकें।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शॉप की जगह आम तौर पे इसको कुछ और कहा जाता है। यूके में देख लीजिएगा या और मगरबी ममालिक में, तो ठीक है आपने जो कहा है बिल्कुल यही मतलब है मंजुला, लेकिन शॉप की जगह एक और वर्ड इस्तेमाल कर लें।
3: ए दुनिया उसी की

0: और सही जवाब आ गया लंदन से कृष्ण सरोय का, चिराग पटेल का फ्रॉम कराठीना। और जी हाँ सलमा अहमद आपने भी सही कर दिया अपना, अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर करेक्ट आंसर। और आशा भीमानी आपने भी सही जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और समय करेक्ट आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि क्या है, पहले हम एक मीठा सा गाना सुनते हैं।
1: और गाना दीदी

0: बच्चे ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं गाने में, कहते हैं आमिन ऐसा बच्चा पहले अपना नाम रोशन करे, अपने वालदैन का यानी माता पिता का नाम ऊंचा करे, परिवार का नाम ऊंचा करे, स्कूल का नाम ऊंचा करे। वो तो सीधे कह रहा है कि मैं देश का ऊंचा नाम करूंगा, अभी छोटा ही है प्राइमरी स्कूल पर ये बहुत बड़े बड़े दावे वालदैन अपने बच्चों को करना सिखाते हैं। मंजुला विश्वकर्मा, आपने जो किया है ना, आपने कहा है कन्वीनियंट स्टोर, वो नहीं है, आंसर है कन्वीनियंस विद अ सी, कन्वीनियंस स्टोर, मतलब वो दुकान जो सारा दिन खुली रहती है, रात को भी मेरे ख्याल है 12 बजे तक खुली रहती है, कन्वीनियंस स्टोर, इसमें छोटी मोटी आपकी ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाती हैं आपको, कन्वीनियंस स्टोर। ब्रिटेन में तो जगह जगह पर है और हमारे लोग ही चला रहे हैं। सो मंजुला विश्वकर्मा, इट एंड्स इन अ सी ई, जिन्होंने भी आंसर दिया था विद टी वॉज नॉट करेक्ट, इट इज़ कन्वीनियंस स्टोर। और यहाँ हमारे अजय पाल भी आए हुए हैं, लेकिन वक्त हुआ है कि मैं आपको ब्रेक की ओर ले जाऊं।
1: All the favorite songs you grew up listening to.
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं।
1: And the premier mix of today.
3: Yeah, just share खुल गए।
1: East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: घर के रास्ते भूल गए।
5: एक कहानी निधि दत्ता की जुबानी, खुल रहा है फिर से कहानियों का पिटारा। कहानी कभी किसी मशहूर लेखक की, कभी किसी अनजानी सी दुनिया से निकली हुई, कभी दिल को छू लेने वाली और कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाली, कभी हल्की फुल्की और कभी गहरी, मगर हर बार एक नई कहानी, एक नया किरदार और इंसान को देखने का एक नया नजरिया। तो सुनने के लिए ट्यून इन कीजिए हर सैटरडे शाम को 4 बजे। कहानियों की बस्ती फिर से बसने जा रही है, तो आइएगा जरूर।
1: लेट्स टॉक मनी ऑन ईस्ट एफएम विद आपसा, एज ओनेस्मास मस्वी, हेड ऑफ प्रीमियर बैंकिंग एट आपसा बैंक, टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम।
6: मेनी पीपल अस्यूम फाइनेंशियल फ्रीडम मींस happy moment. When it comes to Absa Premier Banking, we do understand that our customers have been able to achieve some sort of financial freedom, but they are yet to meet their goals, their dreams, and that is where we come in as Absa Premier Banking. We partner with you and we're able to help you achieve these dreams and these goals at a personal level, and you're able to meet those particular goals.
1: At Absa, we help you build, grow, and protect wealth through every stage of your journey. Download the Absa Bank Kenya app to open your Absa Premier account today. Absa, your story matters. TNCs apply. Absa Bank Kenya is regulated by the Central Bank of Kenya.

0: कहो ना
1: दीवाना।
0: फिर कहो
1: दीवाना।
0: फिर कहो
2: फिर कहो। ब्यूटीफुल दोनों ने गाया है, कमाल का। अब चलते हैं अजय पाल की बात सुन लें।
3: सलाम परवीन जी। परवीन जी, किसी ने बड़ा खूब कहा है, एक दिन यूं ही जवाब नहीं मिला, एक दिन यूं ही जवाब नहीं मिला तो सवाल कम कर दिए, बात नहीं हुई तो ख्याल कम कर दिए, वक्त नहीं मिला तो इंतज़ार कम कर दिए, अपनापन कम लगा तो अधिकार कम कर दिया, अपनापन कम लगा तो अधिकार कम कर दिए, और जब समझ आया कि जगह मांगने से नहीं मिलती और जब समझ आया कि जगह मांगने से नहीं मिलती तो चुपचाप अपना हिस्सा भी छोड़ दिया। अजीब नहीं था यह सफ़र, अजीब नहीं था यह सफ़र, बस एक बात समझ आ गई, जहां अपनापन मांगना पड़े वहां थोड़ा दूर हो जाना बेहतर है, जहां खुद को साबित करना पड़े वहां खुद में लौट आना बेहतर है। और कल हम फिर लौट के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी, धन्यवाद।
2: बहुत अच्छे अजय पाल, द इंटेलेक्चुअल हमारे। और यहाँ पर हैं दिनेश पोपट, सिडकप लंदन।
4: नमस्कार परवीन जी, इट्स बीन एन ऑसम प्लेलिस्ट, आई वाज एंजॉयड ईच एंड एवरी सॉन्ग टुडे, थैंक यू वेरी मच। दिनेश पोपट फ्रॉम सिडकप लंदन।
2: एंड दिनेश, थैंक्स फॉर द फीडबैक। पता चलता है कि लिसनर्स ने एंजॉय किया, कि ऐसे ही पोलाइटली बैठे हुए हैं खामोश। ओके यासर, इन तंजानिया रूरल एरियाज द कन्वीनियंस स्टोर इज कॉल्ड गेंगेनी। इट इज यूजुअली सेंट्रली लोकेटेड इन द कम्युनिटी और अलोंग बिजी रोड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ टेबल अंडर अ शेल्टर, नो डोर्स नो विंडोज। यासर बिल्कुल सही कहा, छोटा सा समय छाता लेकर और सॉयल इतना रेड है, आपको ये टिपिकल अफ्रीकी कन्वीनियंस स्टोर लगेगा। बस वो दो लिए वुड के जो हैं समीर, वो भी ब्रांचेस ले ली हुई हैं किसी दरख्त से काट कर, वो गाड़ दी सॉयल में और ऊपर एक प्लास्टिक का लगा दिया वो, और मेज़ है, मेज़ सबसे बड़ी चीज़ है, उसके ऊपर सब चीज़ें रखी हुई हैं, दिन रात आपकी सेवा में। ये आपने तंजानिया का कहा है, लेकिन मुझे लगता है तमाम अफ्रीकी देशों में ममालिक में ये होता है। और कन्वीनियंस स्टोर बंद हो गया है, हम चलते हैं नूरजहां की ओर।
5: बिल्कुल तेरी तरह, कितना प्यार है राजू को, गुड़िया भी खरीदी तो तेरी शक्ल की,
6: मगर वो मुझे खत क्यों नहीं लिखता?
5: एक ही बात है, वो काम में लगा हुआ है, फुर्सत नहीं मिलती।
6: हाँ तुझे लिखने के लिए फुर्सत है उसे, ले मेरी तरफ से खूब डांट कर लिख दे।
5: अच्छा बाबा, लिख दूंगा घर जाकर।
6: घर जाकर नहीं, अब भी लिख दे।
5: अब भी कैसे लिखूं, ना कागज ना कलम।
6: हाँ तू यही बैठ, मैं अब भी कागज लेकर आती हूँ।
5: अरे

एक दिन यहां पर जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर खातून थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पता क्या रेडियो सुन रही थी अपनी गाड़ी में और मैंने ये गाना सुना मेरे बचपन का कहती हम पाकिस्तान में इतना ये गाना नहीं सुनते यहां सुनकर मेरा दिल खुश है क्योंकि बचपन का ये हमारा मेरी यादें बचपन की इस गाने के साथ वाबस्ता है ये हाई कमिश्नर बता रही थी इसलिए इस दो तीन महीनों में मैंने इसको दो बार सुना दिया क्योंकि वो बात याद आ गई अभी आरफा फ्रॉम ओंगाटा रोंगाई आपने कॉल किया आपने कहा आज एक एक गाना ऐसा लग रहा हमारे दिल से निकला हुआ है क्या कमाल की प्लेलिस्ट बहुत शुक्रिया और अच्छी बात है आरफा आप इंजॉय भी करती हैं

0: It's 8:32.
1: कहानी निधि दत्ता की जुबानी खोल रहा है फिर से कहानियों का पिटारा। कहानी कभी किसी मशहूर लेखक की, कभी किसी अनजानी सी दुनिया से निकली हुई, कभी दिल को छू लेने वाली और कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाली, कभी हल्की फुल्की और कभी गहरी, मगर हर बार एक नई कहानी, एक नया किरदार और इंसान को देखने का एक नया नजरिया। तो सुनने के लिए ट्यून इन कीजिए हर सैटरडे शाम को 4 बजे। कहानियों की बस्ती फिर से बसने जा रही है, तो आइएगा जरूर।
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.